बहुत दिनों रह चुका निकम्मा, बस अब मुझे काम का बना दे। मैं कब से हूँ महव ख्वाब गफलत, बस अब जगा दे, बस अब जगा दे।

नहीं है, तुझे हर वक्त धुन है रहूं सबसे बाला. ऑल द टाइम द कंसर्न इज दैट आई मस्ट बी अबव ऑल. वो जीनत निराली, वो फैशन निराला. व्हाट एवर न्यू लेबल इज इन द मार्केट आई मस्ट हैव इट. एनी न्यू कार इन द मार्केट आई मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट फर्स्ट. एनी न्यू फैशन एंड डिजाइन देन द वुमन वांट्स दैट शी मस्ट बी द फर्स्ट वन टू वेयर दैट काइंड ऑफ ड्रेस. द पर्सन हु इज गोइंग टू डाई एंड वन डे गोइंग टू द ग्रेव ही सेज इज दिस हिज लाइफ स्टाइल. That only concerned about fashion trends. This world is not a world that you give your heart to. You must take lessons from things that are happening around. See what happened in Turkey. We must sympathize with the people that are suffering. We must assist them. We must help them. We must open our hearts to them. But at the same time, we must take a lesson. 7-story buildings within 45 seconds down to rubbles. And 3 o'clock in the morning, who is awake? Fast asleep with their beds and everything gone. To rise no more. Within seconds, what happened in Lesotho? Just across our borders. 2 minutes before the incident, did anybody know that it's all the shops are going to burn like that? What happened in Burma? Did anybody know that everybody that they'll just have to take 100 rupees or 200 rupees and go away from there and there will be such a revolution? So we must take lesson. Don't give our hearts to this dunya. जिस जहां से हमेशा को जाना और कभी लौट कर फिर न आना. जिस जहां से हमेशा को जाना और कभी लौट कर फिर न आना. यह इरशादे कुतुबे जमाना. ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना. डोंट अटैच द

हे बुरी ये गली बढ़ गई बेकली, ए सखी में चली मेरी तौबा भली। तू है गो मन चली मत दिखा खलबली,

अपना अंजाम भी के गई हर कली, बेनिशां बेनिशां हो गए हर निशां, कब्र में खाक छानी मगर क्या मिली, फूल मुरझा गए चांदनी ढल गई, अपना अंजाम भी कह गई हर कली, बेनिशां बेनिशां हो गए हर निशां,

लाख टूटे सितम उसका शिकवा नहीं, चाहे बदले जमाना नहीं उसका गम, चाहे बदले जमाना नहीं इसका गम, आप बदले तो अपना ठिकाना नहीं, आप बदले तो अपना ठिकाना नहीं। ओ माय अल्लाह, लाख आए मुसीबत तो परवाह नहीं, आई एम अनकंसर्न्ड ऑफ द डिफिकल्टीज द हार्डशिप्स एंड द प्रॉब्लम्स एंड द ट्रायल्स दैट आई हैव टू फेस, इवन इफ द होल फैमिली टर्न्स अवे एंड द होल नेशन टर्न्स अवे, आई एम अनकंसर्न्ड। बट ओ अल्लाह, इफ यू टर्न अवे तो फिर मेरा कोई ठिकाना नहीं, then it will be destruction. In fact, if we try to please Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala will then change those hearts. Sooner or later, those very people will then sing the same tune that we are singing.